0: ମନରୁ ଈର୍ଷା ଘୃଣା ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣେ ସେ ସଂସାର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟବାନ ଭାବେ ସତ୍ୟଧାମରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡିଓଗଡ଼ରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6:00 ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान

0: मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट की स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा आरंभ करुछु भक्ति संगीतार कार्यक्रम वंदना कार्यक्रम आरंभ रे कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल गायचंती अलग विश्वाल रचना रो

काही बंधुता काही प्रेम सुंदर जार प्राप्ति जोगु देवता नर अर्थात सामान्य टिके स्नेह ममता पाइबा पई देवता मानकु मध्य मर्त्यलोक को आसी नरजन्म लाभ करिबाकु होइथाय। कारण स्नेह प्रेम बंधुता एसबु मर्त्यलोकर ऐश्वर्य, स्वर्गरे एसबु मिले नाही। किंतु आजिकाली क्रमश आम जीवनरे भी एसबु दुष्प्राप्य हेबाकु आरंभ कलाणी। मनीष एक सामाजिक प्राणी, तेणु विभिन्न वर्गर मनुष्य उपरे निर्भर करि से बंचे। कृषक आमकु शस्य दिए, गोपाल दिए क्षीर, रजक लुगा काचे, शिक्षक शिक्षादान करे, भाई भौणी सांग साथी साई पड़िसा आमकु स्नेह प्रदान करन्ति, एपरिकि विपद आपदरे मध्य साहाज्य करिथान्ति। तेणु सामाजिक प्राणी माने एक बन्धनरे बांधि होइ परस्पर सहित सम्बन्ध रखन्ति। किछि सम्बन्ध व्यवसायिक हेले मध्य अंतरतारे ताहा आत्मिक। समभावापन्न हेबा पई समाजरे अनेक गुड़िए श्रद्धा जड़ित सम्बन्ध स्थापित होइथाय। बंधुता से सबु मध्यरु अन्यतम। तेणु सखा सखी संगात मैत्र मकर आदि केतोटी शब्द बंधु अर्थरे बहु प्राचीन कालरु प्रचलित। एही शब्द गुड़िकर अर्थ जेपरि महत्वपूर्ण सेपरि भावगर्भक। एही भितरु उदाहरण भावरे गोटिए छोटिया शब्द सखाकु निया जाउ। मुनिऋषि माने सखा शब्दर अर्थ करिछन्ति जो व्यक्ति अन्यर विषम परिस्थितिरे सहाय हेबा निमन्ते दौड़ी आसे से सखा अटन्ति। अभावरे पड़िथिबा निस्व व्यक्ति, पाखरे पहुँचिथिबा व्यक्ति, सर्वदा सेवा शुश्रूषा करुथिबा व्यक्ति, सर्वदा अंग स्वरूप रहिथिबा संगी किंबा साधनारे एक पथरे यात्रा करुथिबा व्यक्तिमानंकु सखा कुहाजाए। ओडिशारे भक्ति आंदोलन कालरे जो पांच जन अग्रगण्य पुरुष थिले जगन्नाथ बलराम अच्युत अनंत और जशवंत तांकु पंच सखा कुहाजाए। सेहिपरि सत्यवादी वनविद्यालय जो पांच जनक एक आदर्श प्रतिष्ठित सेही महापुरुष गोपबंधु नीलकंठ गोदावरीश लिंगराज और कृपासिंधु को मध्य पंच सखा कुहाजाए। कृष्ण एवं अर्जुन परस्पर को सर्वदा सखा संबोधन करुथिले। एपरिकि विश्वरूप दर्शन करि रोमांचित होइथिले मध्य अर्जुन श्रीकृष्णकर सखारूप दर्शन करिबाकु व्याकुल होइ पड़िथिले। सेहिपरि खांडभवन दहन कालरे एक विचित्र घटना घटिथिला। कृष्ण और अर्जुन द्वारा परास्त होइ इंद्र कृष्ण अर्जुन को एक वर देबाकु इच्छा प्रकाश कले। सेथिरे आनंदित होइ अर्जुन इंद्र को एक दिव्य रथ अक्षय तुणीर तथा समस्त शस्त्र विद्यार अधिकारी हेबाकु इच्छा प्रकाश कले। किंतु इंद्र जेतेबेले श्रीकृष्ण को वरदान करिबाकु इच्छा प्रकाश कले, श्रीकृष्ण तांकर एकमात्र इच्छा प्रकाश करी कहिले प्रभु आपण जदि मते कोनोसी वर देबाकु चाहंती तेबे एही वर दियंतु जेपरि अर्जुन को सहित मोर चिरंतन प्रीति संबंध रहिथौ। वासुदेवपि जग्राह प्रीतिं पार्थेन शाश्वतम ददौ सुरपति सैव वरं कृष्णाय धीमते। श्रीकृष्ण स्वयं परम ब्रह्म पुरुषोत्तम समग्र ब्रह्मांडर अधिपति किंतु मागिछन्ति पार्थंकर प्रीति बंधुता। एहा कम बड़ कथा नुहे। संसारी मनीष पई बंधुटिए निहाति आवश्यक। से कर्म क्षेत्र हेउ धर्म क्षेत्र हेउ परिवार हेउ बा परिजन रे हेउ स्नेह और श्रद्धार बंधन नथिले जेते भौतिक सुख मिलु पछे मनीष बड़ एकुटिया हो जाए। छाई देउथिबा बरगछरे अनेक पक्षी अनेक बाटोई आश्रय नियंती। एकाटिया ताल गछटी करुण दृष्टि तांकु चाहि रहिथाय। गछ पई जहां सत्य मनीष पई भी।

0: यां हिमांशु ढिल्लो इत्यनेन रजत पदकं विजितं रुद्रांश पाटिलेन च कांस्य पदकं प्राप्तम् अस्याः एव प्रतियोगितायाः पुरुषाणां दल स्पर्धायामपि भारतेन रजत पदकं प्राप्तम् मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां सुचिका तारियाल इत्यनया 60 किलोग्राम मिते वर्गे कांस्य पदकं विजित्य अस्मिन् क्रीडा क्षेत्रे पदकं विजेतृषु भारतीय क्रीडिकासु प्रथमा जाता इति वार्ताः
1: संस्कृतरे संवाद रिलेकरी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी मरिपदा श्रोताबंधु बर्तमान शुणु आज कार्यक्रम संपर्कित सूचना सका 7:25 प्रचार करू सांतालीकला कार्यक्रम 8:15 कार्यक्रम गीतांजलि दिन 12:00 चहला कार्यक्रम आज शुणीपारे झुमर संगीत परेषण कर शिल्पी प्रदीप चंद्र महंत एवं साथी आमर आज सांध्य अधिवेशन रे संध्या 6:00 जुबवाणी 6:30 सूचना एवं संवाद कार्यक्रम राति 7:00 प्रचारित होबा आदिवासी संगीत कार्यक्रम रे कुल्ल गीत राति 8:00 हिंदी कथाचित्र रे गीत नै आसिबो राति 8:30 प्रचार करिबो प्रकृति ओ परिवेश कार्यक्रम राति 8:40 रे गीत अतीत 10:20 सुगमा संगीत राति 10:30 प्रचार करिबो एकक हिंदी कथाचित्रर गीत श्रोता बंधु एथिला आज हम केन्द्र प्रचार कराजिबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कित सूचना आकाशवाणी बारिपदा परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी कटक केन्द्र किछि क्षण मध्यरे

0: साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के

0: साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
1: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
2: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमरीका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
3: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
4: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाए।
3: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
5: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी

0: प्रतिशत लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
1: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
3: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने के जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा।

0: हाँ भाई क्या रे चलो हो
1: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा टिके फिटेई कि कहो
1: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलु उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची हो एते सुविधा
1: जानिनो कि हो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना की कहजो
1: चलो
3: कुआरी मनर स्वप्न असुमारी स्वप्न ता भविष्यत कुनी स्वप्न एवं अभिलाष ता मनर मणिष पाई

0: हाँ भाई क्या रे चलो हो
1: खोरा पानी पवन सब समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा टा के फिटे के कह
1: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक और होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजेल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची होते सुविधा
1: जानी न कि हो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना कि कहजो
1: चलो
3: सपनर पथे पथे जाऊ जाऊ देखा हैला से अचिन्ना मनीष साथे किछि क्षण मध्यरे से करिनेला आपणार मते बांधिनेला मो मन को ता प्रीति डोरी रे।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो, चापलूस कहेंगे।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने। ये पारंपरिक रचना है जिसे संगीत से सजाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्यमेव जयते 2 इस फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी हैं जहरा एस खान और जस मानक ने। तनिष्क बागची और जस मानक का गीत संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती।

पर। गुरु रंधावा और जहरा एस खान के स्वरों में सुनिए डांस मेरी रानी फिल्म का गीत। रश्मि विराग के बोल हैं और सुरों में ढाला है तनिष्क बागची ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी, इस फिल्म का गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तनिष्क बागची और आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं। संगीत है तनिष्क बागची और विजू शाह का।

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाच

0: चर्चा प्रदान एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

and a very warm good morning to all our listeners of Akashvani as we bring to you the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Mera naam hai Sakshi Mandwal, dosto. Aur aaj ke din ki shuruaat mein bahut sare events humne dekhe hain aur dekhne ko bhi hame mile. Sabse pehle agar baat karte hain to kabaddi mein bhartiya team ka jo pradarshan abhi tak raha hai wo bahut hi dominating raha aaj in the men's group A jahan par humne South कोरिया को 63-31 से हरा कर एक बहुत कन्विंसिंग जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत करी. उम्मीद भारतीय कबड्डी के खिलाड़ियों से यही रहती है कि हमारा क्योंकि इस खेल के अंदर हमेशा ही दबदबा बना रहा है हम इसी तरह से जीत हासिल करें. मूविंग ऑन टू सॉफ्ट टेनिस, जैमीना रजिस्टर्ड अ क्लीन 4-0 स्वीप अगेंस्ट पाकिस्तान हुसैन नारायण एंड मेन सिंगल्स ग्रुप डी, वाइल आदित्य तिवारी फेल 1-4 टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर.

0: Aladia Tiwari fell 1-4 to Thailand's Alicia Zilger in women's singles group D. Fencing ki bhi agar hum baat kare to Sachin aur Himanshu Singh dono Sachin hamari taraf se the pool 5 ke andar aur Himanshu Singh rahe pool 1 ke andar unhone chauthe sthan par apne apne pool ke andar men's individual foil mein finish kiya wahi agar karate ki baat kare to Chetan Bhatt suffered a heartbreak in the men's 84 kg kumiti semi final narrowly missing out on a spot in the final via the century rule अब स्विमिंग की ओर बढ़ते हैं आर्यन नेहरा टच द वॉल फोर्थ एंड फाइनल बी ऑफ द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल वुशु में हमारी तरफ से देवी हंजाबाम फिनिश नाइन्थ इन द वुमेन्स नान क्वान फाइनल एंड मूविंग ऑन यहां से भी आगे आएंगे सेपक्तरों की तरफ जहां इंडिया की कैंपेन सफर्ड अनदर सेटबैक फॉलिंग 0-2 मलेशिया इन मेंस टीम रेगू ग्रुप बी एंड नाउ द ब्राइटर न्यूज ऑफ द डे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं बॉक्सिंग के अंदर साक्षी चौधरी हैज एंटर्ड इनटू द राउंड ऑफ 16 जी हां शी डिलीवर्ड अ टैक्टिकल मास्टर क्लास इन द फाइनल राउंड मैनेजिंग द रिंग स्मार्टली टू सील अ यूनानिमस 5-0 विक्ट्री ओवर पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आयरा विलेगस कंट्रोलिंग द पेस landing precise shots and thwarting Willegaard's attempts to bridge the gap. The Indian pugilist cruised through to the round of 16. Well, ab Sakshi ke liye yahan se aage ka safar dikhata hai ki she'll be up for a pre-quarter-final clash against Kazakhstan's reigning world champion Alua Balkibekova. इसके बाद एक नजर बैडमिंटन की ओर भी आज डाल लेते हैं बैडमिंटन में कहूंगी मैं कि पीवी सिंधु का के साथ आज बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई वहां पर हमने देखा कि कैसे पीवी सिंधु वाज अप अगेंस्ट जापानीज अकाने यामागुची शुरुआत के मैचेस में या गेम्स में कहेंगे पहला जो गेम था जहां पर पीवी सिंधु ने उस गेम को अपने नाम किया 23-22 से वेरी नैरली बट अ वेरी गुड गेम दैट वी गॉट टू विटनेस शी वाज एबल टू विन लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गेम के अंदर पीवी सिंधु गॉट बीटन बाय द जापानीज 21-18 से और तीसरा गेम फिर से क्विक सक्सेशन में पीवी सिंधु हार गई अपनी जापानीज ओपोनेंट से 21-11 से As a result, that did not go in India's favor. उसके बाद आई उन्नति हुड्डा जिन्होंने गेम नंबर टू में मैं कहूंगी उन्नति हुड्डा की तरफ से भी परफॉर्मेंस बैडमिंटन में निराशाजनक ही आज रहा क्योंकि जो इसमें भी हमने देखा वहां पर भी शी वॉज इनिशियली ट्राइंग टू विन द गेम बट देन वेंट ऑन टू लूज द गेम अल्टीमेटली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम उन्नति हुड्डा एज तुमुका मायाज़ाकी फ्रॉम जापान मेड एन एग्जेम्पलरी कमबैक टू टेक द सेकंड गेम अवे फ्रॉम हर 21-18 पहला गेम तो वो हार ही चुकी थी 16-21 से और दूसरा गेम दोबारा से वो हार गई जिसकी वजह से यहाँ पर भी वुमेन्स टीम का जो क्वार्टर फाइनल में कंटेंशन हम चाह रहे थे क्योंकि ये पूरा एक टीम गेम है वो हमारे लिए बहुत हमारे फेवर में नहीं गया एंड थर्ड मैं बात करूंगी यहाँ पर कि उम्मीदें अभी बनी हुई है गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जोली से लेकिन उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग मैच जरूर हमने जीत लिया है अगेंस्ट युकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोतो This is going to be obviously जो हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट चैंपियनशिप्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जोली लेकिन अगर इनको हमारे सेमीफाइनल के होप्स को लाइव रखना है तो बहुत जरूरी है कि ये गेम भी ये जीते So far, it's not been too bright a news overall from the world of badminton. And shooting once again turned out to be the biggest disappointment, should I say, of the day today. Because bahut umeedein thi 10-meter air rifle mixed team finals ke andar. Lekin rifle shooting ke andar, hamara jo raha, India finished fourth and hence missed out on a medal. Well, Elabinil, Valarivan or Parth Mane were shattered by the result as they finished fourth with 376.3 points. So far, the best news I can say has come only from the world of boxing. Lekin din abhi bahut lamba hai, cricket bhi aane wala hai, jahan pe Bharat ka medal contention rahega. We'll keep bringing these updates to you every hour. For now, it's a goodbye.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया
2: सुनील जपान आईची नगोया ठारे चालू थिबा एशियन गेम्स 2026 रो अपडेट सरीले करी प्रचार कोलो आकाशवाणी दिल्ली रो परवर्ती अपडेट आपण माने सुनी परिबे दिन 10:30 रे सुनी छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक

0: दरअसल दुर्गा खोटे ने अपने संघर्ष के दिनों में मजबूरी में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। पहली फिल्म में दुर्गा खोटे का बहुत थोड़ा सा रोल था, पर वी शांताराम ने दुर्गा खोटे को मनाया, उन्हें समझाया और इस तरह से दुर्गा खोटे ने अयोध्या चार राजा की हिंदी और मराठी दोनों संस्करणों में काम किया। फिल्म रिलीज हुई, लोगों को दुर्गा खोटे का काम अच्छा लगा।
1: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था। वो टॉकी के शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
1: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विलायत खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल
2: जी,
1: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस वक्त, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली। मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ बिल्कुल ऐसे जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चन्नो की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं मैं आपको ओफो बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आपके लड़के से शादी नहीं करती।
0: चारों तरफ दुर्गा खोटे की तारीफ होने लगी और रातों रात

0: मशहूर सितारा बन गई। इसके बाद प्रभात फिल्म्स ने ही दुर्गा खोटे को अपनी अगली फिल्म में काम दिया, जिसका नाम था माया मच्छिंद्र। दुर्गा खोटे ने हिंदी, मराठी और बांग्ला फिल्मों में काम किया। दुर्गा खोटे की सबसे यादगार भूमिका फिल्म मुगले आजम में मानी जाती है।
1: इतने बड़े हो गए, बड़े सुरमा हो गए हो तुम। इतनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। यूं सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेगी। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों के छनकारों से लोरियां गूंजने लगती। सदी मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी।

अपने 50 साल के करियर में दुर्गा खोटे ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया है। वो हिंदी और मराठी की फिल्मों में तो लगातार काम करती रही। उनकी चर्चित फिल्मों में से कुछ हैं मुसाफिर, राज तिलक, मिर्जा गालिब, मुगले आजम, लव इन शिमला, अनुपमा, दादी माँ। फिल्म आनंद और बावर्ची में भी वो नजर आती हैं। फिल्म बॉबी और नमक हराम में भी, सुभाष घई की फिल्म कर्ज में भी उन्होंने काम किया था। वैसे आपको ये बता दें कि दुर्गा खोटे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से भी जुड़ी रहीं और बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर और के ए अब्बास जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया।

0: गाने का शौक था ही, और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
1: अच्छा, विदेश भी गई हूँ?
0: हाँ, मैं 2-3 दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआई, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज इकट्ठा करना घर के लिए। पैसे देखे तो मेरा घर की तरफ ज्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफी समय भी इसमें डाला।
2: शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के मराठी संस्करण में काम किया था और लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई थी। इस संस्करण में नाटक का नाम था राजमुकुट। आगे चलकर दुर्गा खोटे ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। वैसे दूरदर्शन पर आने वाला मशहूर सीरियल वागले की दुनिया तो आपने देखा ही होगा। इस धारावाहिक का प्रोडक्शन दुर्गा खोटे की कंपनी ने ही किया था। सन 1968 में दुर्गा खोटे को पद्मश्री से और सन 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म साहेब बहादुर सन 1977 में आई थी। इस फिल्म में भी दुर्गा खोटे नजर आई थी। गुलजार की फिल्म खुशबू सन 1975, इस फिल्म में दुर्गा वृंदावन की माँ की भूमिका में थी। 1974 में दुर्गा खोटे ने फिल्म बिदाई में पार्वती का किरदार निभाया और इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: कृष्णा, कृष्णा।

श्रीमान याद है, दुर्गा खोटे ने दुर्गा मौसी का किरदार निभाया था। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उन फिल्मों के गाने जिनमें दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था, जैसे एक फूल दो माली सन 1969, संघर्ष सन 1968, अनुपमा सन 1966। सितंबर 1991 को 86 वर्ष की उम्र में दुर्गा खोटे इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। रह गईं उनकी निभाई कुछ भूमिकाएं और उनकी हंसमुख पर्सनैलिटी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री दुर्गा खोटे पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

0: आप फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देशभर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की

0: सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हुतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनर्प्रयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर बहुत गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं, और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर. तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं. अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो. बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है.
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा. कई बार हम लोगों को देखते हैं आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है क्या?
0: एक ही कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वो कन्फर्म है बढ़ता ही है.

0: तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का
1: जी.
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई. तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी जी.
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है
1: जी.
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते.
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है. जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है शरीर के बाएं तरफ होगा. जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देते हैं. तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है. अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी, पेशेंट चल रहे तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहे हैं. अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं. तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है. तो उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहे हैं, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है. तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है. अच्छा मतलब रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होते. बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को इम्पैक्ट करता है. तो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपैरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं.
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश प्रयास किया जा सकता है?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलते हैं. मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन है हमारे ऑलमोस्ट मुंबई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है. दिक्कत वही है पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो. वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर में मोच आ गई, उसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ. तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए. खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है. तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस है. दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते. तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो
1: जी.
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयां और फिजियोथेरेपी, इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं. तो इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं
1: जी. तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं, तो इसका क्या संबंध?
0: खून अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं. तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है. तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे है, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है
1: जी जी. तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
0: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन और उसको तुरंत खा लो. तो ये किसी हद तक हार्ट में भी

0: अच्छी चीज है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं, उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना।
1: ओहो
0: क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और
1: ओहो
0: दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है।
1: जी
0: तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था, और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन
1: जी जी
0: हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।
1: ओके
0: तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना।
1: जी
0: द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना?
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए। उससे भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है
1: जी
0: वो एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी,
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए हरने, ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाए।
0: पसंद का, मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव साथिया तूने क्या किया बाय आई थिंक एसपी बालसुब्रमण्यम।
1: जी, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: आने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे तो उनके लिए घर पे सुविधा जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना दो महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना दो महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: की? सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, दो दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर आपने जो बताया वही सही था। बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ।
0: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए।
1: तो वो जो ये जो है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए। तो जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। जी, जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहे, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
0: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
1: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयां खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्राम, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है। अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं। तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है। इट इज अ मैटर ऑफ यू इयर्स, 2-5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयां शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर, अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू। दो सर एकदम सेफ दवाइयां रहती है, मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग, किडनी, लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए। अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा हो कि इससे आपको दिक्कत ना हो।
0: बिल्कुल, और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए, और हमें यहाँ पर आंख बंद

0: करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
1: अब मैं सुनना चाहूंगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
0: जी सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना।
1: जी हाँ
0: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले, एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में, तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं, आई थिंक अभी भी जो भी न्यूरो, नॉट ओनली मुंबई, आई थिंक जहां पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है, पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी जी।
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है तो नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो है उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सिटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहा है। काफी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयां लिख दिया उसको, आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती है, पेशेंट को 10 दिन दवाई भेजो तो दर्द एकदम गायब हो गया। और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख

0: के डाउट आता है, हमने पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी भी ऐसा है, 90-95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और दवाइयां ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े, कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयां जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसका जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
1: जी जी।
0: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कुछ डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफी दर्द ऐसे भी है जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
1: जी, सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से?
0: एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया चश्मा, नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल करवाना है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
1: इसकी वजह से सिर दर्द।
0: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल वो जाना है ब्रेन पे। काफी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, दिक्कत है पेट की, पेट में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से आराम हो जाता है। पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूं। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज है, मैं लिख दूं 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको।
1: जी जी।
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, न कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है,
1: भाप ले लो।
0: तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं, दैट इज हाफ इन्फॉर्मेशन।
1: और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है,
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ।
1: और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे कम, तो इसलिए सिर दर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय डॉक्टर से संपर्क कर।
0: वो जो 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके।
1: जी,
0: जैसे ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऑन गोइंग एशियन गेम 2026 के लाइव अपडेट्स के साथ। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव कुंशी और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए सुबह 11:30 बजे का अपडेट। सबसे पहली जो न्यूज मैं आपको देने वाली हूँ वो है बैडमिंटन की दुनिया से। कोई अच्छी खबर तो लेकर नहीं आ रही हूँ लेकिन निराशाजनक खबर ही आपको दूंगी कि भारत का बैडमिंटन के अंदर का जो सफर है वो आज आकर समाप्त हो गया। जी हाँ, हम जापान से 3-1 से हार गए और इसके साथ ही साथ क्वार्टर फाइनल्स के आगे हम प्रवेश भी नहीं कर पाए। भारत की तरफ से पीवी सिंधु का जो पहला मुकाबला था उनकी जापानीज ओपोनेंट अकाने यामागुची से वो तेज 11-18, 11-21 से हारी। उन्नति हुडा लॉस्ट तोमोका मियाजाकी आल्सो 16-21, 18-21 और फाइनली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला भी उन्होंने भलाई हराया था युकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोता को 21-17, 21-16 से एक लौट

0: ट्रॉफी जो हम कहेंगे जीत, इसके अंदर भारतीय खिलाड़ी को मिली, लेकिन वो जीत अपने आप में काफी नहीं थी क्योंकि एक गेम था जो इन दोनों ने हमारे लिए जीता. और फाइनली तन्वी शर्मा हार गई नोजोमी ओकुहारा से 21-12, 21-10. यानी अंत में हमने देखा कि 2-3-1 से भारतीय टीम जापानियों से हार गई.
1: मगर देयर इज गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस. जी हाँ, इंडिया ने जीत

0: इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और
1: जैसे
0: अचानक?
1: ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है, वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, नॉन
0: दबे पांव
1: स्पेसिफिक
0: आने
1: मतलब
0: वाली बीमारी।
1: करेक्ट। काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे जो दर्द का फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि एमआरआई कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तो पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके एमआरआई कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो यहाँ तो एमआरआई इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी टायर थ्री सिटी में जाइए, पेरीफेरी
0: जी
1: में, वहां एमआरआई छोटे आपको न्यूरो के पास पहुंचना इतना मुश्किल हो जाता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हर एक का एमआरआई करना मुश्किल होता है।
0: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं
1: ऐसे।
0: जिससे?
1: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो एक ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
0: जी, तो यहाँ पर एक गाना सुन लें डॉक्टर साहब।
1: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
0: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है. तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है. तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है. तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा. तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है. दिक्कत ये है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4 ये. मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना. एक ही अच्छी चीज है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है. एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है.
1: जी जी.
0: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं.
1: जी बिल्कुल. तो

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है, तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो हमारे देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत मेरे श्रोताओं को न पड़े तो अच्छा है। मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं, स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं। तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन, तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके, तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो
1: बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी, जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना खाना बाहर की लाइफ एक्टिविटी वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5-6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे, ये वो नहीं है। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपने नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
0: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई, हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
1: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने MRI किया, पेशेंट को फिट्स आया था, MRI करके देखे, MRI एकदम नॉर्मल है। तो MRI करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए। बट नॉर्मल MRI है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है
0: जी।
1: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
0: जी, जी।
1: तो वहाँ अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
0: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है, तो उसकी क्या लक्षण है? तो
1: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं।
0: ट्यूमर वही है।
1: तो बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है
0: जी।
1: जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो

0: बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है, बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है
1: जी। तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: MRI हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
1: और फिर
0: उसके हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, दो तीन साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ?
0: ऐसा जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाए। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन, बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता। जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर इसका एक काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लिए आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक तो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम है फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है, किस तरह के
0: स्ट्रोक? यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, बट ट्यूमर में संभाव कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में संभव वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज, बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन है, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर है, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहे, दिक्कत नहीं है फिर भी। स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी? तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी,
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीजें, नशा बंद कर दो बहुत फायदा, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है,

0: जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना नियमित रूप से एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम करना।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद बात है।
0: तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है और सारे छोटे सिटी में भी काफी सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया। और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या ही होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है, तो इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए। जरा
0: हर पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी।
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किस से हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स, एंजाइम सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग, तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयां बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी।
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयां भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी।
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग मॉडिफाई करना है, बट एक है कि दवाइयां इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी, एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है, तो ये क्या कोई न्यूरो
0: रिलेटेड ही है? उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60 प्लस एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगते हैं, तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं, तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया, उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर या पार्किंसंस तो नहीं है, तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं, बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी, तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता।

0: शेखर सिंह।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना एल्बम चंदा की डोली से ये गाना, जिसे गाया सोनू निगम ने। गीत रचना नुसरत बदर की और संगीत सोनू निगम का। रंग तरंग कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

मेड इन इंडिया एल्बम का ये गीत आपने सुना। आवाज अलीशा चिनॉय की, गीतकार अलीशा चिनॉय, बिद्दू श्याम अनुरागी और संगीत दिया बिद्दू ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बनी म्यूजिक अरेंजर और फिर बनी म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन।

0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में

0: गीता शेखर सिंह।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला गाना।

आपने सुना दिल पड़ोसी है इस एल्बम का गीत आशा भोसले की आवाज में, गीत गुलजार का, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुने अगला गाना।

अभी आपने सुना पिया बसंती एल्बम का ये गाना, आवाज उस्ताद सुल्तान खान की और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल का। और सुनिए अब ये अगला गाना।

0: अभी आपने सुना त्रिकोण का चौथा कोण, छाया गांगुली की आवाज, छाया गांगुली की आवाज, गीत रचना महादेवी वर्मा की, संगीत जयदेव का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: 2026 अपडेट रिले करि प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्लीरु।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एशियन गेम्स 2026 के अपडेट लेके आए हैं। मैं अभिनव पुंछे, मेरे साथ है साक्षी मानवाल। और गुड न्यूज फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, इंडिया ने टारगेट दिया है श्रीलंका को गोल्ड मेडल मैच में 217 का। जी हाँ, इंडिया में 216 for 3। टॉप स्कोरिंग वाज स्मृति मंदना विद 79, शिफाली वर्मा 48 एंड अ स्टनिंग 22 बॉल 49 बाय ऋचा घोष। श्रीलंका जवाब में एक विकेट ऑलरेडी अपना खो चुके हैं, इमेश दुल्यानी आउट हो गए, मगर कैप्टन फैंटास्टिक चमारी अट्टापट्टू इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। याद दिलाएं, ये वही हैं जिन्होंने 83 नॉट आउट मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ, एंड दैट हैड मेड श्रीलंका चेज अ रिकॉर्ड टारगेट ओवर देयर। सो इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, इट्स हाई स्कोरिंग, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम वी अपडेट यू देयर इज सम विकेट्स, एंड होपफुली शिफाली दिस द कैप्टन फॉल्स।
3: वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया, ऑलवेज रूटिंग फॉर इंडिया। गो इंडिया, गो द वुमेन इन ब्लू। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्विक अपडेट, दोस्तों आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग में तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी भारत की तरफ से बनी है जिन्होंने अपना राउंड ऑफ 32 में वुमेन्स एपी इंडिविजुअल को जीत कर विद अ कन्विंसिंग 15-10 की विक्ट्री थाईलैंड के नटापापट संगनियो के ऊपर, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई टुवर्ड्स द राउंड ऑफ 16। जी हाँ, मतलब दिस इज गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, बिकॉज तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी है जो अब राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सॉन्ग से रा के साथ अब उनका आमना सामना होगा। वहीं फेंसिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वुमेन्स एपी इंडिविजुअल में मितवा जेसंगबाई चौधरी, या फिर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में भी हम अगर देखें हेमश सिंह सनासम या उसके साथ साथ सचिन, ये सारे ही प्लेयर्स अपने अपने राउंड से यानी राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए।
2: थैंक यू सो मच फॉर दैट साक्षी, अपडेट कमिंग इन फ्रॉम फेंसिंग। मगर बैडमिंटन से भी आपको अपडेट दीजिए तो इंडिया वर्सेस जापान क्वार्टर फाइनल्स आर ऑन राइट नाउ, और एक्शन में है लक्ष्य सेन, उनके सामने कोडाई नारोका, और इनका बहुत ही क्लोज इनकाउंटर चल रहा है 1-1।

रहा है क्योंकि पहला जो सेट था वो लक्ष्य सेन हारे थे 21-11 से, दूसरा से जीते 21-5 से, अभी 19-14 से पीछे है लक्ष्य सेन। याद दिलाएं इसके बाद हमारी सात्विक चिराग की जोड़ी होने वाली एक्शन में, तो होपफुली दिस टाई कैन बी टर्न्ड अराउंड एंड इंडिया हैज अ चांस बिकॉज आर इंडियन वुमेन आर ऑलरेडी आउट। द वुमेन्स टीम कैंपेन हैज एंडेड बिकॉज दे लॉस्ट अर्लियर टुडे टू थाईलैंड।

सिर्फ अनुप फिल्म का गीत था। और अब आरडी बर्मन, फिल्म का नाम है पुकार, गीत गुलशन बाबरा का।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। एक पूरे दौर की याद थी इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं, और आज का जो टेक्स्ट है वो पोस्ट हो चुका है। अब सभी जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर आते हैं वो सभी उस टेक्स्ट से वाकिफ हैं, पर अपने उन श्रोताओं के लिए जो रेडियो सेट पर हमें सुन रहे हैं, मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूं। ये दो लोगों की बातचीत है। सोशल मीडिया पर कैसे 80s का दौर लौट आया ना, सब अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तुमने बनाई अपनी फोटो? नहीं, मैंने 80s के गाने सुने। अच्छा, ऐसा? हाँ ऐसा। क्या सुना बताओ तो जरा। अरे सीधा सीधा बताया तो क्या बताया, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम भी उसी तरह से इशारे में जवाब देना। मंजूर? हाँ चलो हो जाए। अब लड़का कहता है, हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाएंग। तुम हो बुद्धू जान लो, यू आर हैंडसम मान लो। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। अरे इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। वाह वाह नहले पे दहला, लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया। ऐसा तो फूलों के शहर में हो घर अपना, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, ओह इतना दर्द, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। ये कहां आ गए हम, कितना मजा आया ना इस खेल में। ऑफ कोर्स, तो भाई ये है आज की इबारत, और जाहिर है कि इस इबारत के जरिए आपको अंदाजा लग गया है कि गाने कौन से हैं। पर इन गानों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम 80s के दौर को, उस दौर की जिंदगी को, उस दौर के जज्बात को याद करेंगे।

तो भाई अपने मोबाइल फोन पर जाइए, फेसबुक पर पहुंचिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी जल्दी ये लिखना शुरू कीजिए कि 80s के दौर में आप कहां थे, आपकी क्या उम्र थी और उस दौर से जुड़ी हुई यादें कौन कौन सी हैं आपकी। इन गानों के जरिए हम सीधे 80s के दौर में पहुंच जाएंगे और बस ये समझ लीजिए कि उन सुनहरी यादों के गलियारों में से गुजरेंगे जब जिंदगी जिंदगी होती थी, जब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की रीलें नहीं होती थी, जब जज्बात हुआ करते थे और जब यूं कहा जाता था आई लव यू। एटीज के दौर के कौन कौन से खेल आपको याद हैं जो आप अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेला करते थे और इस गाने से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी,

भाई कमाल का ये गाना और कमाल की 80s की यादें हैं। श्रोता लिखते हैं कि 79 में तो मेरा जन्म हुआ था, 80 के दशक में मैं बच्चा था और उसके बाद उन्होंने 90s की कुछ फिल्मों को याद किया है। अर्ली 90s की करमाना की नाराम लखन, प्यार झुकता नहीं एक दूजे के लिए, कभी 90s की सैर भी करेंगे इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तेरे बिन मर जाना कॉलेज में तहलका मचा दिया था इस गाने ने, किसी को प्रेम का इजहार करने या छेड़ने के लिए मनपसंद गाना था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दौर में स्कूल में पढ़ रही थी, तीन खेल तब बहुत लोकप्रिय थे, कबड्डी, खो खो और छुपम छुपाई। क्या याद दिलाया, छुपम छुपाई कितने लोगों को याद है। और छुपम छुपाई में ऐसी ऐसी जगह छिप जाते थे कि कहीं मकड़ी के जाले लग जाते थे तो कहीं कुछ हो जाता था, ये भी याद कीजिएगा। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। इस बीच में एक सुंदर खबर हमारे एक श्रोता ने भेजी है और कहते हैं कि भारत की लड़कियां आज गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल आएगा। बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि भारत और श्रीलंका की लड़कियों का मैच चल रहा है, T20 मैच, पहली बार बहुत सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है एशियन गेम्स में। और भारत ने 20 ओवर में 216 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और श्रीलंका 7 विकेट

चुके हैं, 11वां ओवर है, केवल 54 रन है, तो कुल मिलाकर ये संभावना जताई जा रही है कि आज भारत की लड़कियां जीत जाएंगी और भारत का एशियन गेम्स में इस बार का पहला गोल्ड मेडल हमारे पास आ जाएगा। तो जश्न मनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि अब बस 9 ओवर का खेल बाकी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ही ये खेल जो है खत्म हो जाएगा और भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत जाएंगी और जब तिरंगा लहराएगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ वापस लौटते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीला सफर सुनकर दोपहर की सारी थकान मिट जाती है, हम चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सिर्फ जीवन संगीत नहीं बल्कि एक एहसास है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम ओपिंगो बैटिंगो खेल खेला करते थे। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि खुददार फिल्म एक हफ्ते में 2 बार देखी थी, पहली बार 20 मिनट निकल चुकी थी इसलिए दूसरी बार फिर देखने के लिए गए थे, तब भी 20 मिनट, यानी शुरू की 20 मिनट इनकी हर बारी छूट गई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और बहुत सारे लड़के इस गाने को गुनगुनाया करते थे, रेडियो पर जब ये गाना बजता था तो बड़े चाव से सुना करते थे। एक और श्रोता है जो लिखती है कि वो कलकत्ता में थी, 27 साल की उम्र उस वक्त उनकी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 80 के दशक में नौकरी मिली थी और 80 के दशक में के अंत में शादी हो गई थी, पिछले 25 बरस उनकी उम्र थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। आज तो भाई 80 के दशक की सैर है सुरीला सफर कार्यक्रम में, और जरा देखिए कि हम कहां पहुंच गए, किन यादों में। जब ये फिल्म आई थी सनी देओल और अमृता सिंह की अभिनय वाली, तो ये गाना जैसे सभी के होठों पर सज गया था। आपकी क्या यादें हैं इस दौर से जुड़ी हुई, जरा हमारे साथ बांटिए। न जाने कितने लोगों की प्रेम कहानियां परवान चढ़ी ये कहते हुए।

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि छुपन छुपाई से एक बात याद आ गई। एक बार झाड़ियों में हम छिपे हुए थे। भाई ये कमेंट्स जो है ना नीचे की तरफ भाग जाते हैं, तो नुकीली टहनी से गहरा घाव लगा जिसकी निशान आज भी कोहनी में मौजूद है, एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सनी देओल की हमने अर्जुन फिल्म देखी थी और उनके प्रशंसक बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई तब घर गृहस्थी में पूरी तरह से घिर गए थे, पर धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए वक्त निकालकर फिल्म देखी थी। एक और श्रोता है जिनका जन्म 80 के दशक में नहीं हुआ था, लेकिन जन्म से पहले के ये गाने पसंद आए और पसंद हैं। विविध भारती कमाल है, आपके आने से सुरीला सफर और भी सुरीला हो जाता है, ये बात इन्होंने लिखी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 13 साल की उम्र थी, वो मौसम के हिसाब से खेला करते थे, जैसे बारिश में कंचे और गुल्ली डंडा और बारिश का मौसम थमते ही पतंग उड़ाना, ठंड में क्रिकेट खेलना, ये ऋतुओं के हिसाब से हमारे खेल थे। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर यानी। देखिए रेडियो जो है, विविध भारती जो है, सिर्फ आपको गाने नहीं सुनाता बल्कि आपके पुराने जज्बात, आपका नॉस्टैल्जिया, आपकी जिंदगी की पुरानी यादें, कितनी सारी चीजें एक साथ हम लेकर चलते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि 80 का दशक, 80 के गानों का दौर, हमारे लिए तो 80 सब कुछ था। बच्चन साहब, खूबसूरत गाने, रेडियो सुनने का नशा, विविध भारती रेडियो, सीलोन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, सब कुछ, और हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 80 का दशक, बड़े बड़े फ्लैश लाइट वाले कैमरों से फोटो खिंचवाना, स्टूडियो में जाकर तरह तरह के पोज के साथ फोटो खींचना और उन्हें एल्बम में चिपका कर रखना, टेप रिकॉर्डर के लिए कैसेट लाना और विशेष गानों को की लिस्ट बनाकर कैसेट्स में उन गानों को डलवाना, क्या सुंदर याद है भाई। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि वो पूरी लिस्ट लेकर जाते थे कैसेट वाले भैया के पास कि भाई ये गाने इसी क्रम में डाल दो, और कई बार वो उल्टे पुल्टे क्रम में डाल दिया करता था। ऐसी कोई याद हो तो बांटिएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है, मजेदार याद शेयर करते हैं, लिखते हैं कि 81 की बात है जब हम हरदा से इटारसी एक दूजे के लिए फिल्म देखने के लिए 5 मित्रों के साथ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। हम टिमरनी नामक स्टेशन पर पकड़े गए जो हरदा से 15 किलोमीटर दूर था। हमारे पास 2-2 रुपए थे, वो तो छीन ही लिए गए, उल्टे 15 किलोमीटर दूर हरदा पैदल जाना पड़ा। आज ऐसी यादों को याद करते हुए हंसी आती है, और वो फिल्म जो है 1 महीने बाद देखने को मिली थी। बड़ी ही मजेदार याद आपने शेयर की है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दशक के गानों में सिर्फ गाने नहीं बल्कि वो रस हैं, और इन गानों के बिना हमारी जिंदगी का रस अधूरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें AI के जरिए बना रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के गीतों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर याद हमारे एक श्रोता ने शेयर की थी। वो उन्होंने कहा था कि 80 के दशक की तस्वीरें तो आप बना लेंगे, लेकिन उस दशक की सादगी कहां से लेकर आएंगे, वो सरलता, वो जीवन की सुगढ़ता, वो जीवन का सुकून कहां से लाएंगे, जब संगीत में शोर कम और सुकून ज्यादा था, जब पुराना कोई दोस्त पीछे से कंधे पर हाथ रख देता था। ये गाने बस गाने नहीं है, बचपन की पहली साइकिल, पहली मोहब्बत की चिट्ठी, माँ के हाथ की चाय, वो शामें जो कभी लौट कर नहीं आएंगी, ये संगीत जो आज भी जिंदा है। क्या याद आता है 80 के दशक के नाम पर आपको, वो सुहानी यादें लिख दीजिए, बांट लीजिए आज हम सबसे, सारी दुनिया को बता दीजिए वो यादें। क्या इस गाने में इस गायक की आवाज आप जानते हैं, ये किसकी आवाज है जो नसीब इंसान का गा रहे हैं,

0: राजू मोबाइल छाड़े।
1: अरे दीदी बैंक रो नंबर दरकार, रिफंड आसीनी। मिलीगला एबे कॉल करूची दीदी।
0: बिना नंबर जांच करिके प्रायतः जालिया लोके बैंक रो नकली वेबसाइट आ मिछो नंबर द्वारा टंका ठकई करी थांदी।
1: तो ठीक नंबर
0: बैंक रो ऑफिशियल वेबसाइट किंबा कार्ड रे
1: तमे तो बंचाई देला दीदी।
0: कामरु नु हे।
2: आरबीआई कहे
3: सठिक आर्थिक आचरण रखे अपन को सुरक्षा रो ध्यान।
4: नारी महल

0: ନାଇଁ
1: ଖାଲି ଅଟା ଲୁଣ ଆଉ ତେଲ ପାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ
0: ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ତେଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ
1: ତେଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ
0: କାହିଁକି
1: ତେଲର ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ ରହିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ
0: ଆଚ୍ଛା
2: ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
3: जारी रहेगा लेकिन अभी समय हुआ है डेढ़ बज गए हैं तो लीजिए अब समय है एशियन गेम्स 2026 के अपडेट का
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया
5: वेलकम अ वेरी वार्म वेलकम जय हिंद As we bring to you the latest update at 1:30 PM on Akashvani, I am Sakshi Mandwal, dosto, aur mere saath is waqt hai Abhinav Punshi, and we bring you the big news ki Bharat ko Asian Games 2026 ka pehla gold medal mil chuka hai. Ji haan, wo lekar aayi hamare liye hamari cricket ki Bharatiya mahila ki team. Yes, the first gold that comes in for India today. They have gone on to create history for the Indians because this is always going to be special. The first gold of the ongoing Asian Games. 2026, they defeated England by a huge margin of 147 runs. Bharatiya Mahilaon ne 216 run banaye unke given stipulated 20 overs mein for the loss of 3 wickets and then they went on to defeat and completely choked the Sri Lankans for just mere 69 runs. Abhinav, what a day to celebrate this moment, to cherish this moment.
6: Ji haan, Sri Lanka ko haraya hai hamari Bharatiya Mahilaon ne aur kya tremendous victory thi Sri Lanka ke against because in India had put up a mammoth total of 216 for 3 और उसके बाद श्रीलंका जो जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड चेस करी थी सेमीफाइनल्स में आज कुछ नहीं कर पाए इट वॉज अ डेमोलिशन डर्बी जैसे कहा जाता है 69 ऑल आउट इंडिया विनिंग बाय 147 रन and the Indian women have defended their gold which they won in Hangzhou 4 years ago. Fantastic performance with the bat. Vesprithi Vandana with 79, Shefali Verma 48, Richa Ghosh at 22 ball 49 aur uske baad wickets mein to kamal dikhaya DP Sharma with 3 wickets. Shefali ka fir se all-round performance, 2 wickets. Shreyanka Patil with 2 wickets as well and Shree Channi with 2. So कमाल की परफॉर्मेंस और इंडिया के पास पहला गोल्ड आ चुका है जी हाँ सुबह से आप लोग हमारे अपडेट सुन रहे होंगे थोड़े से निराश हो रहे होंगे क्योंकि इंडिया का आज इतना अच्छा दिन नहीं गया मगर साक्षी व्हाट अ ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस विक्ट्री एंड आई थिंक पूरे नेशन का जो मूड है आज is going to get much better and everybody is going to have a smile on their face.
5: Yes, indeed. Aur aaj ye chehre ki hansi hatni hi nahi chahiye because hamari ladkiyon ne hame itne sare reasons diye celebrate karne ke liye. Sabse upar to gold medal rahega hi rahega lekin uske sath sath dosto aapko ye bhi bataye ki ye Bharatiya Mahila Cricket Team ke liye 8th लगातार 8वीं T20 इंटरनेशनल की जीत है यस दे हैव गॉन ऑन टू विन 8 T20 इंटरनेशनल्स ऑन अ ट्रॉट एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट और उसके साथ साथ श्रीलंका ने आखिरी बार भारत को 2024 के एशिया कप के फाइनल्स में हराया था वो हम सब जानते हैं उसके बाद से भारतीय महिलाएं उनको 8 बार T20 इंटरनेशनल मैचेस में हरा चुकी हैं और एक और बहुत अच्छी खबर जो है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए वो ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये जो 147 रन के मार्जिन से श्रीलंका को हराया है आज वो अभिनव आज तक का सबसे बड़ा डिफीट मार्जिन है जो भारत ने किसी भी ओपोनेंट को दिया होगा 147

0: ଶୁଣିଲି ନାରୀ ମହଲ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: श्री वैष्णव एक अवसर में सब् राज्य केन्द्रशासित अंचलगुड़ी से प्रमुख पर्यटन स्थलगुड़िकर प्रस्ताव उपस्थापन करने को अनुरोध करातीय चलचित्र पुरस्कार प्रदान समारोह परवर्त संस्करण आउ एक प्रमुख पर्यटन स्थल आयोजन हो सूचना जलर सठिक व्यवहार उपरे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गुरुत्व प्रदान करिछन्ति। नुआदिल्ली राजी नवम भारत अंतर्जातीय जल सप्ताह सम्मेलनी 2026 को उद्घाटन करिबा अवसर रे श्री राधाकृष्णन जल संरक्षण दिगरे सहयोग तथा समन्वित आभिमुख्य ग्रहण पर आह्वान देछन्ति। प्रजुक्ति विद्या नवसृजन सुदृढ़ व्यक्ति गवेषणालब्ध ज्ञान क्षेत्रस्तरीय अभिज्ञता एवं प्रभावशाली परिचालना सुनिश्चित करिबा उपरे से गुरुत्व देछन्ति। प्रशासनिक सहयोग एवं आवश्यक स्थले देश मध्यरे भौगोलिक सीमापार पदक्षेप पाई से परामर्श देछन्ति। जलवायु परिवर्तन वर्षार परिमाण को अनिश्चित करुछि। अत्यधिक वर्षा तथा दीर्घकालीन शुष्क परिस्थिति परिचालना पाई सठिक व्यवस्थार आवश्यकता रहिछि बोली से कहिछन्ति। श्री राधाकृष्णन कहिछन्ति नदी अवबाहिका परिचालना भूतल जल पुनः संरक्षण वर्षा जल अमल दक्षता संपन्न जलसेचन परिचालना लक्ष्य नहीं एक समन्वित पद्धति रे कार्य करा आवश्यक। सम्मेलनी रे जोगदे जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल कहिछन्ति देशर प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ तथा पर्याप्त पानीय जल जोगाइबा नै सरकार अंगीकारबद्ध। जल एक सहभागी संबल होइथिबारु एहार संरक्षण को सहभागी दायित्व भाबे निर्वाह करा जिबा उचित पुलिस कहिछन्ति।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती भोजन स्वास्थ्य उद्योग ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: जलवायु आधारित निरंतर जल परिचालना प्रसंग आधार रे एही सम्मेलन आयोजित होउछि। पांच दिनिया एही कार्यक्रम रे नेदरलैंड्स और जर्मनी अंशीदार देश भावे सामिल होइछन्ति। देशर 14टी राज्य तथा 6टी केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग एही सम्मेलन रे जोग देइछन्ति। निर्वाचन कमिशन आज 11टी राज्यसभा आसन पर द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यसूची घोषणा करिछन्ति। एथरे उत्तर प्रदेश दसटी एवं उत्तराखंड गोटी आसन अंतर्भुक्त। केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी बीएल वर्मा समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव बीएसपी रामजी समेत अन्य 6 जणंकर आसंता नवंबर मास 25 तारीख में कार्यकाल पूरण होउछि। उत्तराखंड राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल आसंता नवंबर मास 25 तारीख में कार्यकाल शेष होबाकु जाउछि। एथिपाई पश्चिमबंग राज्यसभा मध्य गोटी आसन रे निर्वाचन नै कमिशन को पक्षरु घोषणा करा जायछि। टीएमसी सांसद रुक्मणी मल्लिकंकर इस्तफा जोगु एही आसन टी खाली पड़िछि। आसंता 29 तारिख रे नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ केबा सह अक्टोबर 16 तारिख रे भोट ग्रहण हेबा नै कार्यसूची रहिछि। उत्तर प्रदेश रे 11टी बिहार रो 8टी महाराष्ट्र रो 5टी एवं कर्णाटक रो 4टी विधान परिषद आसन रे निर्वाचन पई कमिशन घोषणा करिछन्ति। एथिपाई 29 तारिख को नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ हेब एवं आसंता मास 23 तारीख में मतग्रहण करा जीवो बोली कमिशन सूचना देछंती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा को 25 वर्ष पूर्ण होइछि। जनसेवा देशसेवा मंत्र आधारित जयजात्रा एवं एपर्यंत जारी रहितिबा निरंतर अंगीकारबद्धता को यह प्रकाश करुछि। सेवा एवं सुशासन को दृष्टि रखी केन्द्र सरकार 2047 मसीहा सुद्धा विकसित भारत लक्ष्य पूरण लागि निरंतर कार्य करि आसुछन्ति। सेवा संकल्प अभियान रही स्वतंत्र धारावाहिक आज आम आपंक पीएलआई योजना संपर्क में सूचना प्रदान करुछु। उत्पाद भित्तिक प्रोत्साहन योजना अधीन सरकार उत्पादन वृद्धि एवं यार आनुषंगिक व्यवस्था नहीं बहुविध पदक्षेप ग्रहण करिछन्ति। कर्णाटक एवं भारत शिल्प क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य भाव परिणत होइछि। इलेक्ट्रॉनिक्स जैव प्रजुक्ति विद्या नवीकरणीय शक्ति एवं ऑटोमेटिक उत्पादन समेत विभिन्न क्षेत्र में राज्य व्यापक अभिवृद्धि घटिछि। सेमिकंडक्टर क्षेत्र में कर्णाटक गतिशील होउछि। औषध तथा चिकित्सा उपकरण उत्पादन क्षेत्र में मध्य पीएलआई योजना उपयोगी सब्यस्त होइछि। एशिय क्रीड़ा प्रतियोगितार महिला टी20 क्रिकेट वर्ग में भारत टाइटल हासिल करिछि। जापान निशिहेनठारे खेला फाइनल मैच में भारत श्रीलंका को 147 रन में परास्त करिछि। भारतीय दल टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करने को निष्पत्ति नहीं निर्धारित 20 ओवर में भारत 3 विकेट विनिमय 216 रन संग्रह कर दल पक्ष स्मृति मंधाना सर्वाधिक 79

0: Shreyashi became the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket when he made the record during the Asian Games final against Sri Lanka in Nissan. Mandhana smashed 3 sixes and 3 fours in the first 4 overs to get India off to a blistering start. She surpassed former Indian captain Mithali Raj's record of 10,868 runs across all formats. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates third national conference of anti-narcotics task force heads of states and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. This Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts,

0: डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है, जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा, नहीं वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा,
0: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
1: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
0: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं, नहीं मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है।
1: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत।

आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ।

0: जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी,
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, कितनी गलतियां आपको मिलेगी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है
0: जी।
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते, या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: हाँ, संगीत में
0: रुचि है,
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ, फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत जरूरी है, एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना। और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ, जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फार्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीजों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो, और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं, फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच,
0: धन्यवाद।
2: शेली लॉयड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
3: सेल्यूलॉइड

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
4: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
4: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
4: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
4: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
4: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मोहब्बत तीन तरह की होती है, जो हमें मिले कबूल करे ये नसीब है, दूसरी वो जिसे चाहे वो इंसान मिल जाए ये मुकद्दर है, और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि हमें मालूम होता है कि उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर भी दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, इसे ही इश्क कहते हैं। और ये इश्क बड़ा बेरहम होता है।

ख्वाबों से ना जाओ कि अभी रात बाकी है, पहलू में आ जाओ कि अभी रात बाकी है। जी भर के तुम्हें देखूं, तस्कीन तो हो कुछ, मत शम्मा बुझाओ के अभी रात बाकी है। कब दिन निकले कब रात कटे कौन ये जाने, छोड़ के न जाओ तन्हा के अभी रात बाकी है। कट जाए यूं ही उल्फत की बातों में ये पल, जागो हमें जगाओ के अभी रात बाकी।

मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर जिद नहीं करना के साथी छोड़ जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो कभी शिकवा नहीं करना, ये शिकवे गिले दिलों को दूर करते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो सिर्फ मोहब्बत करो न जाना, कि मोहब्बत ही मोहब्बत को मजबूत करती है।

दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मैंने मोहब्बत का चेहरा तो नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा है। अगर मोहब्बत की कोई सूरत होती तो वो हूबहू तुम्हारे जैसी होती। अगर मोहब्बत बोल सकती तो लहजा तुम्हारे जैसा होता। तुम्हें पता है तुम वो इनाम हो जो बिन मांगे मिल गया, वो खजाना हो जिसका कोई मोल नहीं। तुम्हें देखते ही सांसें महक जाएं, धड़कने बहक जाएं, मेरे बाग़े मोहब्बत का वो खुशनुमा फूल हो तुम। किसी नेकी का सिला जख्मों का मरहम, दोस्त जाने मन सुकून जिंदगी। मुख्तसर सी बात है, मेरा सब कुछ हो तुम।

जानम मेरे लिखने से क्या हासिल, तुम पढ़ो तो कोई बात बने। मेरे सोचने से क्या हासिल, तुम समझो तो कोई बात बने। मैं चुप हूँ तो क्या हासिल, तुम कुछ कहो तो कोई बात बने। मैं फूल हूँ तो क्या, तुम खुशबू बनो तो कोई बात बने।

चाहने से क्या हासिल, तुम भी महसूस करो तो कोई बात बने। मैं बेरंग हूं तो क्या, तुम उल्फत का रंग भरो तो कोई बात बने।

जो टूट कर बरसे और थम जाए, मोहब्बत आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए, मोहब्बत आफताब नहीं उभरे चमके और ढल जाए, मोहब्बत तो महताब है, बढ़ता है घटता है निकलता है छुपता है, मगर कभी फना नहीं होता। तुम्हें देखूं तो कहीं भी नहीं, सोचूं तो कुछ भी नहीं, मगर जो कह दूं तो तुम मेरे होने की सनद हो। मेरी एक हद है और उसमें बेहद हो।

अब क्या सुनाऊं दास्ताने इश्के यार, सुनने वाले मिलते हैं दर्दे आशना मिलता नहीं। साथियों अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
1: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम बजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
1: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
1: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे, 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
1: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
1: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओं कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
2: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से।
1: खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
2: जी,
1: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
2: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
1: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
2: जी,
1: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
2: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
1: श्रोताओं, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने

0: की जरूरत नहीं थी।
1: जी।
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
1: जी।
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
1: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
1: जी।
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
1: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
0: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही लेकिन अब
1: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
1: जी।
0: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद

0: कहूंगा ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है खेल संध्या।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Deeksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India. Brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Deeksha, Deeksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।

0: सपना देखूं जिससे खीर मिले।
1: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। ना तो वो सोया और ना ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
2: अरे उठो, उठो, उठो। अरे उठो,
3: उठो, उठो।
2: अरे उठो।
4: बैग बैग के पैक, बैग बैग।
1: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
2: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
5: अच्छा।
2: परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
1: दूसरे ने कहा,
5: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बन गया।

0: हाथी घोड़े नौकर चाकर थे। मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी।
1: ओ
0: लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
3: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं कुछ

0: समझ नहीं पा रहा था। उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा,
1: चलो
0: सीधी तरह खीर खाओ,
1: क्या
0: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
1: खीर खाए तू?
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
3: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
4: नहीं खाता, तू क्या करता? अपनी जान से हाथ धोता?
5: तुम झूठ बोलते हो।
3: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
4: जगाता कैसे? तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Arjun of France, जिससे आज भारत ने श्रीलंका को हराया है अभिनव. A very proud moment for every Indian.
1: It's a glorious moment और बहुत ही गर्व है हम सब भारतीयों को. आज हमारी इंडियन वुमेन्स टीम एशिया कप भी जीता और आज एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और याद दिलाएं ब्रॉन्ज मेडल गया पाकिस्तान को जिन्होंने हराया बांग्लादेश को. और आज लग रहा है कि थीम है इंडिया को श्रीलंका को हराने का क्योंकि हॉकी में इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से हराया. इंडियन मेंस टीम आज तो पूरी तरह फायर पे थी क्योंकि जुगराज के चार गोल अभिषेक और दिलप्रीत की हैट्रिक और हरमनप्रीत के दो गोल की वजह से इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली अपना मैच जीता 16-1. इंडोनेशिया को हराया था 13-1 और अब 16-1 तो लग रहा है हॉकी टीम सीधा करेक्ट पाथ पे जा रही है.
0: इंडीड हॉकी टीम करेक्ट पाथ पे जा रही है. उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भी थी और अच्छा लगता है देखकर कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी हमारी आशाओं पर खरा उतर रहे हैं. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुशु की. वुशु की दुनिया से भी आज एक बहुत अच्छी बड़ी ताजी खबर आ रही है विच इज दैट इन भारत की वुशु स्टार जिसको हम कहते हैं रोशिबिना देवी assured herself of a third successive Asian Games medal after storming into the women's Sanda 60 kilogram semi-finals with a 5-0 victory over Macau, China's Chu Manson. आज के दिन वेल द सेमी फाइनल बर्थ गारंटीज रोशिबिना एट लीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 20 26. और आपको ये बता दें कि रोशिबिना देवी जो हैं वो पहले भी भारत की एक बहुत कहते हैं ना जगमगाता हुआ स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रह चुकी है. वो ऐसा सितारा है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं बिकॉज ये वही शख्सियत है ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया हुआ है 2018 में और सिल्वर मेडल भी दिलवाया हुआ है 2023 में. और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष उनका सफर एक पायदान ऊपर ही जाए अभिनव. And she goes on to get the gold for us, also for our country.
1: Of course, रोशिबिना देवी making India proud. Unfortunately, आर्यन जिन्होंने कोशिश करी थी अपने quarter-final match में वो अपना match हारे 2-1 नहीं तो वो भी प्रवेश semi-finals में guaranteed होता इंडिया को एक bronze. गारंटी तो इंडिया को ब्रॉन्ज होता अगर इंडियन विमेन्स टीम हरा पाती टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल टीम्स इवेंट में नॉर्थ कोरिया को मगर वो नहीं हो पाया. तीन सिंगल्स मैचेस हुए तीनों में क्लीन स्वीप करा नॉर्थ कोरिया ने. श्रीजाकुला यशरवीन घोरपड़े और दिया चतले तीनों को हार का सामना करा. मेन्स टीम की भी याद दिलाएं आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल्स में साउथ कोरिया से हारे 3-0 सो डिसअपॉइंटिंग इन टेबल टेनिस.
0: Right, and somehow that disappointment also seeped into the world of gymnastics because gymnastics mein agar hum kahein to a slight correction over there did not seep into the world of gymnastics. Ulta gymnastics ki taraf se ek choti si khushkhabri aapko deti hu filhal ke liye, which is that Praniti Nayak qualified for the world finals in artistic gymnastics with the score of 12.916. ji ha, Praniti Nayak jo Bharat ki taraf se representation rakh rahi hai gymnastics ki duniya mein, ab dekhna hoga kyunki unko final mein apni jagah wo bana chuki hai ki wahan se kya वो इस सफर को एक कदम और आगे ले जाती है और भारत को मेडल दिला के लाती है ये तो आगे ही पता चलेगा. लेकिन अभी के लिए खुशखबरी यही है कि प्रणति नायक भी क्वालिफाई कर चुकी है वोल्ट फाइनल्स के अंदर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स में विद अ स्कोर ऑफ 12.916 अभिनव.
1: और अगर हम कल की बात करें तो एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल्स की बरसात हो सकती है भारत के लिए क्योंकि 6:15 एक्शन में होंगी या मनु भाकर और आईएस सरुचि एंड ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट. एंड उसके बाद हमारे पास एक और गोल्ड का मौका है क्योंकि 10:00 आने वाली है मीराबाई चानू एंड साक्षी आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी मीराबाई चानू गेट हर एशियन गेम्स मेडल व्हिच शी इज डेस्परेट फॉर.
0: Yes, I am. I'm definitely looking forward to that. And the good thing is that I should hopefully be covering that. And we'll be looking forward to the medals going up tomorrow. Lekin abhi ke liye filhal, hamare paas 6:30 sham ke updates mein itni hi aapke liye khabar thi. Sham ko 7:30, ek ghante baad, fir aapse ek baar Akashwani ke madhyam se judenge aur leke aayenge aapke liye din ka wrap up aur also all the latest updates and the preview for tomorrow's events. Goodbye for now.

0: हाँ भाई क्या चल हो
1: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
0: ओह माने कथा फिटे कह
1: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलई मशीन टुल्लू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आउ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट

0: सब रकम सुविधा मिलुची
1: केठे मिलुची हो एते सुविधा
2: जानिनो किहो बारी पोदार अति परिचित दुकान पोरा
3: ठिकणा होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छको बारी पोदा
1: ताला जीबा ना की कहजो
2: चलो
4: ए सुनुच झियो बाहागर ए पर्यंत गहणा किणा हलानी
0: अरे मो सांगो कहतला नांडू भाई गहणा दुकान रो कथा
4: नांडू भाई गहणा दुकान सेठी सब ठीक

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: भगवतिया, हाँ रे पुओ, आबोड़िया, तू हेपोटे जीबू, मु हेपोटे जीबी, हेपोटे किए, वोशित हमें कि नहीं, आजी किए कुआडू, आई गड़ी ना नहीं, क्या दानी कहरो तो देखा दर्शन। उठाए कौनो, सब दो हैला किए उधे, आई लो ना कौनो।
4: जुहारे जुहारे भाई।
3: जुहारे जुहारे तुम्हें किए?
4: प्रतिमा दीदी बा।
3: प्रतिमा दीदी, ये जो भलिया बरसा नागिची।
4: हाँ भाई।
3: हाँ हाँ, सेठरे भी फूल तुम्हें आज कोड़े बाहर चलो।
4: कुहानी कुहानी भाई, सकाळु बर्षा लागिची जे लागिची।
3: मु त देखुची।
4: हेले छुआ मानको टिके न पढेले संध्या बेले।
3: हां,
4: मते को भल लागे। टिके पढेली एडे आसिली।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अभ्यास।
4: आज्ञा।
3: भलो अभ्यास। माने तमे पढेले खुशी होचो ना नै? छुआ माने भी मन ध्यान देकि पढुचो ती।
4: मु भी खुशी, छुआ भी खुशी।
3: खुशी? बढ़िया। माने जानी कि हम गां कोठो घर तो छुआ बसी कि पढंती सेठी बसी जाई थबो।
4: नाही भाई, सेठी बसी पढु जे। आज हम गां कोठो घर न करी कि आज अलग गोटे घरे कली।
3: माने
4: सेठी टी वर्षा पानी होउची, जोठी टी छुआ को सुविधा हबो, सेमिते जगह टी देखि कि पढ़े के असली हो।
3: अच्छा बढ़िया। विद्या अटोई महाधन,
4: बालके कर उपार्जन।
3: उपार्जन पाठ पढ़ाटा तो रीतिमत चली थवा दरकार। काहे कि जानि छौ तू कोन हमरो जेमापा?
4: नाई म मु कोन जेमापा? प्रतिमा दीदी पा।
3: प्रतिमा दीदी, मो मन त जाई कि अलग जगह रे रहिछि।
4: कोन गोटे हेइछि भाई?
3: हबो नै भगवतिया जाउ थेला।
4: हां
3: हां, मोठु पैसा नै थेला।
4: तमोठु भी नै गेले?
3: माने कोन से तमोठु भी पैसा नै छि रे? को
4: मोठु जो पैसा नै थिले, मु मोर जहां आनिबे कथा आनि जि
3: ता। बा बा बा, बस बस, किंतु मो दिन छोटा मिलिला नै, सारो टिके मगेइ थिले।
4: ओहो,
3: हां, को सारो पचार? को
4: सारो?
3: यूरिया आसिबो नि?
4: यूरिया को अभाव?
3: हाँ, मु केतेले अभाव स्वभाव कथा कहली, मोर आवश्यक अछि पैसाटा, सियाड़े सारो, सियाड़े भगवतिया, सियाड़े मते केमदि भल लागिबो देखिया कहिलो।
4: मते कहिले नि?
3: माने
4: मु किनि दैछि ना।
3: किनि सचो?
4: आउ
3: मु जानि पाइली नै, कोनो ठीक दर रे किनलो?
4: हां,
3: माने
4: मु जेते बेले समस्त किनु थिले, मु भी भगवती को पैसा देथिली, ता हाथ रे सेई यूरिया सारो हि किनि कि आनली।
3: हां, निमजुक्त यूरिया टी।
4: हां,
3: श्रोता बंधु, मु सरकारी स्तर रे व्यापक व्यवस्था हेछि, निमजुक्त यूरिया फुनि आहुरी केते कोन प्रकार रो
4: सारो बाहरी लानी।
3: किंतु विशेषज्ञ परामर्श मुताबक
4: आमको सार प्रयोग करबा को पड़िबो।
3: जाइलो जो गरमाम प्रतिमा दीदी।
4: आज्ञा।
3: बहुत जगार मु देखुची अधिक अमल आशारे आमर चासी भाई माने मन इच्छा सार प्रयोग करछती।
4: मन इच्छा सार प्रयोग कले गछ उडा को मरि जिबानी, चि सड़ी जिबानी?
3: तो तेमे तेमे सब जाइला भलिया कहछ।
4: आउ
3: माने
4: हेटी भाई, देह को जेती खाद्य दरकार सेती की खाइबा ना नहीं अधिक खाई जीबा?
3: नहीं अधिक कोन, मु खाइदा कोन?
4: ना नहीं, मो आपण के खाइबे, मु काई खाइबी? गच्छ खाइबा कथा पड़ी छी।
3: ओ गच्छ?
4: हां।
3: अच्छा, माने कहिबार उद्देश्य?
4: कहिबार उद्देश्य गच्छ को जेती की खाद्य सारा दरकार आमे सेती की दबा।
3: किम जानिबा?
4: सेटा हम कृषि विशेषज्ञ को पचारि बुझिबा।
3: कथा पदे कहिलो जो आमो माळोपा कोन? मो
4: नहीं माळोपा नुए, मो प्रतिमा दीदी।
3: प्रतिमा दीदी, मुंडुटा तो जाई कि से भगवतीया पाखरे रही गला।
4: से दबो, आपण काई व्यस्त होउचंती?
3: पैसा नै छि पुरा।
4: हां, पैसा रो सारो किनि कि देबेनी?
3: आ तमे बुझी परबो नै, पैसा पत्र सियाडे बरसा होउचि, जिनिस मिलला नै जो हम प्रतिमा दीदी।
4: भाई बुझिले, एते लोभ कां भल? जणे पैसा नै छि माने दबो किनि कि?
3: मु जानि छि से दबो, किंतु मो हाथ को मो जिनिसटा न आसला पर तो मो मनटा टिके काई स्थिर होउ नै।
4: सेटा हबो।
3: हबो
4: हबो,
3: माने आमे को खराब लोक?
4: ना ना, आपण बहुत भल लोक।
3: बहुत भल लोक,
4: जिनिसटा देई छथि जेतले न पाइबे पर्यंत।
3: अच्छा,
4: मनटा सेंति हबो?
3: आ तमे भी गला से कथाटा को सियाडे नबे इदेलो संज घडी पागो देखुचो एमितिया। मु टिके गीतवादीर व्यवस्था होनता नै?
4: नै नै, परली गीत गोटे सुणी माने।
3: सुणा
4: आउ।
3: हौ

0: ଶୁଣିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଷାନବାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିମା ଦାସ ପ୍ରଯୋଜନା ରାଜୀବ କୁମାର ମହନ୍ତ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

गुस्सा है चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत है चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा।

0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूठी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामीदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित

0: भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जैम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जैम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक

0: जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award, Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards, India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security, Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Center inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष से और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards.
3: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. आज हम एकता नगर, जहां सरदार साहब की world's tallest statue है, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार we'll go to one more important destination. I am giving a call to all the states and union territories. Select one of the most important tourist destinations in your state. Tell us what improvements you'll make in it. Your destination will be selected and we'll have the next round of NFA in the selected tourist destination.
1: At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का गाना हसरत जयपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक खलनायक की।
1: भारत ने जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर।
2: जय जय राम जी की। लखपति जरा खाता देखकर बताना कि भारत ने कितना रुपया जमा कराया था और सूद के साथ वापस कितना लिया और कब लिया।
3: प्रेम चोपड़ा, सिनेमा के पर्दे पर एक नहायत शरीफा है, मेरा मतलब है एक नहायत आवारा बदनाम शख्स, पर जिसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है। आप भी सोच रहे होंगे कि आप फिल्मों में मेरे जुल्म देखकर मुझे गालियां देते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मैं इसे प्यार बता रहा हूं। पर इन गालियों में जो प्यार छुपा है, इस नफरत के पीछे जो मेरी तारीफ है, वही तो मेरी जिंदगी का अनमोल सरमाया है।

फिल्म बॉबी में मैंने एक छोटा सा रोल किया था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग की वजह से एक बार मैंने एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। मैं डलहौजी से दिल्ली आ रहा था, रेल का सफर था, न जाने कैसे लोगों को पता लग गया कि एक स्टेशन पर जैसे गाड़ी रुकी तो हमारे डब्बे के आगे हजारों लोग जमा हो गए। गाड़ी चलती तो लोग जंजीर खींच कर रोक लेते, जब कोई दूसरा रास्ता ना देखा तो मैं डरते डरते दरवाजा खोलकर सामने आया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें वो बॉबी का डायलॉग सुनाइए जो आपने उस पिक्चर में कहा था। खैर साहब, मैंने बड़ी मामूली तरीके से वो डायलॉग बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसा आपने फिल्म में बोला वैसे ही बोल के सुनाइएगा, तब हम गाड़ी को आगे चलने देंगे। मुझे वैसे ही डायलॉग बोलना पड़ा जैसा मैं पहले कहा कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई और हंसते हंसते हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया।

दोस्तों शिमला में बीता है प्रेम चोपड़ा का बचपन। ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किया और आ गए बम्बई। उनके पिताजी उन्हें फिल्मों में भेजने के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर या इंजीनियर बने। पिताजी की मर्जी के खिलाफ प्रेम चोपड़ा चले आए अभिनय की दुनिया में। बतौर हीरो प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म थी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह, जो बड़ी मशहूर हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा अंग्रेजी के एक जाने माने अखबार के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी किया करते थे। वक्त निकालकर संघर्ष करते और अपनी तस्वीरें लेकर चल पड़ते निर्देशकों के दफ्तरों में काम मांगने के लिए।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से पहले एक बार मैं किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग पर गया हुआ था। तीन चार बार जब वापस लौटा तो घर वालों ने बताया देवानंद साहब का कई बार फोन आ चुका है, वो बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन से देव साहब को अपने वापस आने की इत्तला दी। उन्होंने कहा फौरन मिलो प्रेम, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त रोल है, कहानी सुनने के लिए 3 घंटे निकाल कर मेरे पास आना। मैं देव साहब के पास पहुंचा, मुझे देखते ही कहने लगे तुम खटमंडू के राजा हो, खटमंडू तुम्हारा है, खटमंडू तुम ले लो। जो कहानी देव साहब 3 घंटे में सुनाने वाले थे वो 3 लाइनों और 3 मिनट से भी कम वक्त में सुनाकर मुझसे माफी मांगकर चल दिए। मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया।

जब प्रेम चोपड़ा ने खलनायकी की शुरू की तो दोस्तों ने बहुत समझाया पर उन्होंने एक न सुनी। उनके दोस्त उन्हें हीरो बनने की सलाह देते थे और प्रेम चोपड़ा थे कि किस्मत की लहर में खलनायकी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।

मनोज कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को भाई साहब कहते हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे के पांव छूने को झुकते हैं। हमें उम्र के मामले पर बहुत झगड़ा चलता रहता है। मैं कहता हूं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो, वो जिद करते नहीं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो। एक बार हम दोनों किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बीकानेर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गांव के लोगों ने हमें घेर लिया, हर तरफ से आवाज आने लगी मनोज कुमार मनोज कुमार मनोज कुमार। जब मैं गाड़ी से निकला तो मनोज ने पूछा इन्हें पहचानते हो? आवाज आई जी हाँ, ये प्रेम चोपड़ा ही तो है, उपकार वाले।

0: आपके बड़े भाई साहब। सुनते ही मनोज कुमार खूब हंसा और बोला, देखो प्रेम, मैंने पूरी 3 घंटे की फिल्म में तुम्हें अपना छोटा भाई कहा, मगर लोग तुम्हें मेरा बड़ा भाई कह रहे हैं। अब तो मान लो तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे नहीं।
1: क्या? चले जाओ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ।
2: और मैं कहता हूँ छोड़ दो प्रीति को।
1: जाते हो कि नहीं?
3: तुम चिंता मत करो बेटी, देखता हूँ पोता अपने दादा पर हाथ कैसे उठाता है। और
4: प्रेम चोपड़ा की संवाद अदायगी उनकी सबसे बड़ी खासियत है। चेहरे पे ऐसी चिकनी चुपड़ी नरमी होती है कि पूछिए मत, लेकिन नरम छुरी से जिगर को लहूलुहान कर देने वाली खलनायकी है प्रेम चोपड़ा की।
1: ये दुनिया को पश्चिम की देन है, इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा।
5: अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो, तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली।
2: तो मर जा बेटी।
5: नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलाओ गोली।
1: हट जाओ, तुम बार बार मेरे रास्ते में आते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: फिल्म कीमत के सेट पर एक बार बड़ा मजा आया। इस फिल्म में एक बहुत बड़े गैंग का मैं बॉस बना। बड़ा खौफनाक गेटअप था मेरा। मेरे साथ हर सीन में चंद खौफनाक कुत्ते रहते थे। एक सीन था, मैं रोप से बैठा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ से मेरे चमचे पालतू कुत्तों को लिए बैठे हैं। सामने हीरो यानी धर्मेंद्र को ला जाता है, उसे देखते ही मैं एक भयंकर कहका लगाता हूँ। एक तो मेरा खौफनाक चेहरा और उस पर ये भयंकर कहका उन कुत्तों को अच्छा नहीं लगा शायद। और जो कुत्ते बैठे हुए बहुत छोटे से लग रहे थे, जब खड़े हुए तो उनका कद मुझसे भी ज्यादा बड़ा था। और सब ने एक साथ गुर्रा कर मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ लपके। बस फिर क्या था, मैं सब अकड़ और बॉसपन बिल्कुल भूल गया और चिल्लाना शुरू कर दिया और सेट पर एक बहुत जोरदार कहका गूंज उठा।

0: फिल्मी दुनिया में प्रेम चोपड़ा लंबे समय से मौजूद हैं और तरह तरह की खलनायकी की भूमिकाएं उन्होंने की हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम प्रेम चोपड़ा को बतौर चरित्र अभिनेता देख रहे हैं कुछ फिल्मों में। इन्हीं में से एक फिल्म थी उनके दोस्त राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया।
1: प्रेम चोपड़ा को फिल्म दो अनजाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उनकी सिल्वर जुबली फिल्मों में शामिल हैं दो जासूस, अर्जुन, स्वर्ग से सुंदर, दूल्हे राजा, फूल बने अंगारे, दाग, हुकूमत, पूरब और पश्चिम, उपकार, राजा जानी, आमने सामने, महबूबा, काला पत्थर वगैरह। फिल्म त्रिशूल का उनका किरदार तो आपको याद ही होगा। अमिताभ बच्चन के साथ प्रेम चोपड़ा फिल्म देश प्रेमी के इस गाने में थिरकते हुए नजर आए थे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता प्रेम चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
0: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने

0: शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन
1: लेस वुड हैव बीन एन अपसेट, लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
2: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया।

0: इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है, वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
0: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है, और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है, और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया की डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं, बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं, उनका वजन भी बढ़ गया है। लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास। लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया, शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादूमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है, और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
0: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया, लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ।

0: अंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था, इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यू को स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यू को और 1 इपॉन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे, लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंशु का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
1: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली, तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान, वेयर पीवी सिंधु डिस्पाइट हैविंग वन द फर्स्ट गेम वेंट ऑन टू लूज द नेक्स्ट टू अकाने यामागुची। इन द नेक्स्ट मैच उन्नति हुडा ऑफ इंडिया लॉस टू तोमोका मियाजाकी। द थर्ड मैच वॉज प्लेड बिटवीन त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद ऑफ इंडिया हु बीट Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan, yet this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match, because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabut of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favor of India.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कंप्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, thereby कंप्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
0: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका

0: सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनीक्षक ने बड़ी चुनौती दी लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनीक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग जिंग वेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरुमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई लेकिन नूरुमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया और बता रहे हैं अभिनव।
2: आर्यन नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India. It was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एलावलिन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
2: The Indian shooting pair of Elavanil Valarivan and Parth Mane finished fourth in the 10 meter air rifle mixed team final at the Asian Games 2026 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
0: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन

0: इक्वेस्ट्रियन कंटिजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों छोटे कलाकारों सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार झारखंड केरलम महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक

जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।